इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रिरि सिरिदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर बुढ़नाथ की जय।

0: ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जार्डन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल

जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। लो, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए को नहीं, 15 लाख रुपया उठा सकते हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है। 15 करोड़ अब तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ। और वो पैसे जो है जो हमारे मस्तिष्क में है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, द लैंग्वेज, द फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट वी कॉल इज संस्कृत। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, मे बी 2-3 नॉट एवरीवेयर देयर इज द वर्ड्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इन मैनी मैनी मैनी मैनी कंट्रीज। एंड ऑल्सो द कल्चर गोज फ्रॉम द भारत। All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia also were the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं। सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर, दे आर कमिंग and we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much, and now

अब आपके पास अब स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल का समय हो गया, चालू भी हो गए, आप मैंने आपके सामने बैठ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, एक जगह में बैठ नहीं सकते, नींद तो आती रहती है। अभी तो 9 बज गए, तो शायद जाने की समय है या स्टडी का समय है। यहाँ का प्रॉब्लम है, जनरल पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है स्टडी में, कि सब लोग जनरली बच्चे सोच रहे हैं कि स्टडी का क्या मतलब है, एग्जाम तो आएगा दिसंबर में, जब एग्जाम आएगा मार्च में, एग्जाम आएगा अप्रैल में, अभी क्या स्टडी करना है। तो आप ऐसे कीजिए, 365 दिन है, आप आज 6 महीना के लिए खा लेना। एक दिन में 4 रोटी आप लेते हैं, ठीक है, सुबह 2 शाम को 2, ठीक है, मान के चलो 5 रहते, 6 लेते हैं, तो 6 महीना में कितना दिन होगा? 180 दिन। 180 दिन में 5 रोटी एक दिन का हो गया कितना? 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है। 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते हैं, पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली, तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते हैं, ओपन स्टडी करते हैं, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मान के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा? 180 तो हो गया, नहीं हुआ? तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा? असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं, कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा? पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते? मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरु जी यहाँ है तब तक स्कूल चलेगा। और गुरु जी को कैसे खुश कर सकते हैं? कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स

Good. Thank you. Thank you, ne main huniyo. Thank you. And you see the all vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the हमारे गुरुकुल के बच्चे जो है turn to the camera side. मुंह देखो दूसरे लोग नहीं. Only the vidyarthi turn to the don't go close to the फिर चला नहीं दिखेगा बेटा. तू इधर आ खड़ा हो जा. बस बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी इफ व्हेन इज देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओम शांति शांति शांति. ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिव उर्वारुकम् एव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतम्.

निर्मा ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो इस कैमरा में, देखो दिख रहे हो तुम लोग, तुम दिख रहे हो पीछे खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी इन द स्कूल व्हेन वी हैव द प्रेयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स देयर। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद। दिख रहे हैं सभी के? नहीं दिख रहे? यस, टाइम फॉर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ अपने यहाँ हर महीने में एक दो बार, और मैं आऊँगा तब तुम्हारे को पूरे संसार की यात्रा करा देंगे स्वामी जी टेलीविजन के जरिए।

ओम नमो श्री प्रभुदीप नारायणम। दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख

0: जय हो।
1: समय बड़ी कीमती है भजनों सजनों, मारो एक ही भजन है क्यों आप प्रचार करे सामराय गौ माता रो। ये नर्तन जो तुझको मिला है यूं गमाने के काबिल नहीं है, हर सांस अनमोल हीरा है यूं लुटाने के काबिल नहीं है। गाय जिंदे जी सेवा कमाए, गाय जिए जीते दूध देवे, दही देवे, घी देवे, गोबर देवे, गोमूत्र देवे, और मरने के बाद भी उसका हड्डी और चमड़ी काम आवे।

0: सब जीव आप समान जाने आप तनो गुण बिना पशु समान अजिया गल तनो मिनक मूंगो जान राखे मिनक पनो। तो गाय जिंदे दी सेवा कमाए मरकर भी काम आए, नर तेरा जिस्म मरने के बाद काम आने के काबिल नहीं है। इंसान को गणित समय को टाइम इज मनी, समय धन है। क्यों मैं एक भजन रखी हो आपने, इंसान को इंसान होना नहीं आया। हंसते तो सभी खिल खिल पर दूसरों के दर्द पर रोना नहीं आया। बाहर से कपड़ा सभी धोते हैं अपना अंतकण धोना नहीं आया। भर पेट तो सभी खाते हैं आगे के लिए कुछ बोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी मगर आज तक गोना नहीं आया। यानी सद्बुद्धि को नहीं आई, गाय के प्रति आस्था को नहीं आई। भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में, भगवान ने ऐसी सुंदर मूर्त गढ़ी है 9 महीने में। गड़कर के निज देव बिठाया तुम्हारे सीने में, इसको छोड़कर लगे हैं मृग जल को पीने में। अंतर आत्मा को छोड़ भटकते काशी मक्का मदीने में। सुजनो भगवान ने दी ऐसी सुंदर काया, तेरे लिए क्या क्या बनाया, पर तू उस दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा। गौ माता के प्रति कोई संत आश्रम में, कोई अनाथ आश्रम में कोनी पैसा खर्च रहे, दुर्व्यसन में पैसा खर्च करे लोग। कुकर्मों में लट्टू है एहसान खर्च करता उन पर भी पैसा, ये मिले अनमोल बिना मोल सत्संग, पर तू इसमें जाने के काबिल नहीं है। भरा ये सत्संग का दरिया नाइलो जिसका जी चाहे, जिगर है दाग पाप का धोइलो जिसका जी चाहे। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, भगवान का कीर्तन कौन करे, सदगुरु का गुणगान कौन करे, अशुद्ध गीत गावे, मुनि बदनाम हो गई डार्लिंग तेरे लिए। झूठ बोले गप्पे उड़ाए गंदे गीत मस्ती से गाए, अब ये तेरी जीभ प्रभु के गुण गाने के काबिल नहीं है। हाँ सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। सोच ले एक दिन रोना पड़ेगा, नरकगामी होना पड़ेगा। होगा जो तेरा बुरा हाल ऐसा जो बताने के काबिल नहीं है। फालतू सिर पर बोझ लिए फिरते, बार बार जन्मते और मरते, तेरा मस्तक हो गया इतना बोझिल जो संतों के आगे झुकाने के भी काबिल नहीं है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है। सत्कर्म से नर्तन मिला है, अच्छे बाग से फूल खिला है, पर तूने माँ बाप की सेवा नहीं की तो तू दुनिया में आने के काबिल नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों के एहसान रहने दो। दिल में दया आंख में शर्म होठों पर मुस्कान रहने दो। जिंदगी में जीने का यही तरीका है दोस्तों, ने तो खुद उदास रहो और ने दूसरों को उदास रहने दो। हो जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, असत्य और अनीति को त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, अपने को जान करके मस्त रहना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी ऐसी बना अगर जिंदों में है, वो जिंदगी क्या काम की जो अपना जीवन नहीं बदल दे। जिंदगी में जीना है तो जीने की यकीन कर, सूरज आसमान पर इसे ले आ जमीन पर। एड़ा सत्य कर्म कर, माता पिता की सेवा कर, गौ माता की सेवा कर, तो सूरज तारा पांव चूमे। यूं ब्रह्मानंद समझावे, बार बार नर्तन नहीं पावे, ऐसे सु अवसर को गमावे तो तुम मोक्ष पद पाने के काबिल नहीं है। खूब महापुरुष पधारिया, समय बड़ी कीमती है, टाइम इज मनी एंड मनी इज गोल्ड। अब मैं इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो गौ माते की
1: जय हो।
0: साध्वी जो को पधारिया वारू, आप जो मन संचरण करना जो आपने नाम लेवे जो आप भजन सुनता रहे जो साध्वी जी आप खूब भजनी पधारिया। आप अपरा विचार रखिए, आप अपरा प्रवचन, आप अपरा भजन। बोलो राम जी महाराज की
1: जय हो।
2: सर जाना नहीं है, बैठना है। दो जय हो। आप रखना मान है।

ए ओलियों डोलियों हंसते घूमता तुरी अठार लग त्यागी हाँ ओलियों डोलियों

0: अनंत कोटि के महापुरुषों की
1: जय हो। अमर वे गया, अमर वे गया।
0: जो मरा श्री अब मन संचालन जो इज्जत दे स्वकृति दे त्यू भजन सुनावता रहे लोग आप प्रेम सुनता रहे जो
1: जय बोलो गो माता की।
0: यूं है गौ माता है नी गौ माता जकारे घर में गौ माता है और जकारे घर में तुलसी को पौधो है जकां के घर गुरु महाराज की मूर्ति है वो ही घर हिंदू धर्म की संस्कृत में सनातन धर्म में गिनती में आवे और जकां के घर में गाय नहीं है तो सुजनो घनी व्याख्या नहीं करूं मैं थोड़ी सी भजन गाऊं नाला ज्यादा है टाइम इज मनी। मैं आप बात बार बार कहूं कि समय दनेर में ही ज्यादा बेलड़ा उड़ूदन उचित कौन लागे छोटी सी बात है बड़ी मार्मिक बात है जीवन में काम आवेला। राजा भरतरी जिन टेमरा जोग ले राजपाट ने परित्याग कर दियो राजा भरतरी चक्रवर्ती सम्राट हो
1: जय हो।
0: गोपी चंद और राजा भरतरी मामो भांजा हा तो राजपाट ने उजीन नगरी ने परित्याग कर वन में निकल गो। भगवान भी परीक्षा लेवे स्कूल में बच्चों पढ़े मेरी मास्टर परीक्षा लेवे अर्धवार्षिकन वार्षिकन परीक्षा में पास रहे तो अगली क्लास में एडमिशन है फेल रहे तो एडमिशन नहीं है। तो वीनी तेरे भगवान भी परीक्षा लेवे कि इरो वैराग्य सच्चो है या कच्चो है। तो सजनों महीना डोड महीना तक राजा भरतरी ने अन्न कोन मिलियो महीना डोड महीना तक हाँ वो वन में फल फूल जी में और नदी सरिता में पानी पियर भजन करे जिसके लागी नाम की नैन बेन कह देता है। एक दिन संयोग को बड़ी मार्मिक बात है ध्यान एक दिन संयोग भी ने सुको रोटी को टुकड़ो मिलियो चार आंगल वो क्यों आज अन्न देव भगवान दर्शन दिया है आज आप भोजन करा जबकि 45 दिन तक अन्न को मिलियो 45 दिन तक वो प्रेम भी भोजन ग्रहण करन पाचो भजन में बैठो तो भी नगरी को एक शासन करने वालो राजा हो आपरा कामदार ले वन में घूमने वास्ते गियो वो राजा भी राजा भरतरी ने सुको टुकड़ो ने खावता देखियो जन आपरा कामदार ने कियो ओ कोई मगतो है कोई भिकारी है सुकोड़ो टुकड़ो कोई देन की बढ़िया कहीं टकूनी लाया जो कोई तो खावे इनकी तो कोई मगतो ही कोनी भूखा मरे है थे जा इन कह दो के माने राजा के दरबार में चलो मां के राजा का गढ़ में चलो तने दपाई जिमाई दे वहां भरपेट भोजन करो क्योंकि तुम भिकारी वो कामदार जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है आठा कोनी कोई राजा है लेकिन उसे मालूम नहीं था वो जाए कि मारा राजा साहब रो हुक्म है तुम भूखा मरे तुम भिकारी है मैं तो उनका हूँ भिकारी हृदय की जोड़ी भक्ति का देन दान मैं मांग रहा हर वारी मैं उनका हूँ भिकारी मेरी मोक्ष उसी दिन हो गई जब गुरु मिले शुभकारी अब आवे तो मैं सबकी कर दूं चाहे आ जाए जग सारी मैं उनका हूँ भिकारी बात मत ओटला तुम भूखा मरे तुम हाल माने गढ़ में जीम ले थारा राजा ने पूछ के मने क्यों जिमावो और राजा साहब वो निमंत्रण स्वीकार कौन करे बोध के मने क्यों जिमाओ अरे क्यों कहीं जिमाओ राजा ने धर्म रे जकाऊ जिमावे तुम भिकारी है तुम मगतो है तुम भूखा मरे धर्म रे जन थार राजा ने जाय पूछ के धर्म की माँ कौन है धर्म री माँ कौन है अरे वो स्वीकार कौन कर बो के धर्म री माँ कौन है वो राजा भी बुद्धिजीवी हो बो की धर्म री माँ है दया मन थर माता दया आई जनी तुम्हें जिमाऊ वा जन तर राजन और जाय पूछ के जन धर्म रो बाप कौन है अरे राजन वो माने कौन वो के धर्म रो बाप कौन है जन वो सोचली मन में आप इन भिकारी समझा भिकारी तो कौन आ तो चीज तो कोई हीरो तो कोई दूसरो ही है जाय देख के बीरो नूर पहली मराशी रेट वाई क्या करिए नी वो भगवा बेग एक अग्नि है इमे सब चीज जले ई वास्ते बिरु नूर अबार आला साधु संत के में कोई आलोचना कौन कौन आगले संत महात्मा बसम लगावता शरीर के बसमी ताकि शरीर भूंडो लागे डाडी यूं बड़ा अवता ताकि कुरूप दी के शरीर बने शरीर ने भी सजावता कोनी बबूती लगाई ली तो बीरो नूर बीरो तेज कोई छानो थोड़ो यो तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं सूर्य छिपे नहीं बादल छाया रण चढ़े सूरवीर छिपे नहीं दातार छिपे नहीं गर मंगत आया चंचल नार का नैन छिपे नहीं प्रीत छिपे नहीं पूट दिखाया ये योगी का बाना अनेक करो पने कर्म छिपे नहीं भभूत रमाया जाय प्रणाम करण की ओसा धर्म की माँ है दया और धर्म को बाप है संतोष क्यों जन राजा मणि चार अंगल टुकड़ा में संतोष है जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी जो दस बीस पचास बयसत हो हजार तो लाख मंगेगी कोटि के अरब खरब बये तब धरापति होने की चाह जगेगी उदय अस्त लो राज मिले तो तृष्ण अधि की आगे लगेगी सुंदर एक संतोष बिना सेठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी तो संतोषम परम सुखम गुरु का वचन सदा सिर ऊपर अखे अमर धुन लागी मच्छंदर प्रताप जति गोरख बोले वो जोग लियो बड़ भागी भरतरी राजा भूप भयो वेरागी इतना कहकर के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ अचानक में कोई आ जाए उसे मेहमान कहते हैं भूख में कुछ मिल जाए उसे पकवान कहते हैं करे किसी निर्धन की मदद उसे धनवान कहते हैं करे जो गौ माता की सेवा वो महादान कहते हैं करता जो माँ बाप की सेवा उसे संतान कहते हैं जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसे इंसान कहते हैं आर्ट इज लाइफ
1: जय हो ढोलक वाला पधारा ने ढोलक हाँ ढोलक बजावा होने ढोलक बढ़िया ढोलक बजा पीला बुसरट वाला पधारो सा ढोलक बजाय वास्ते पधारो पीला बुसरट वाला ओ मारसा आओ ढोलक बजाओ आओ अशोक जी ढोलक वाला

ओम शलपुरजी महादेव की देवादिदेव देवेश्वर महादेव श्रीदीप नारायण भगवान की हिंदू धर्म सम्राट परमान स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सदगुरुदेव भगवान की विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमान स्वामी श्री महेश्वर अनंतपुर जी गुरुदेव की

0: सुखसागरमीचनम्
1: नवलिया सवयोपरे आनंद होतय पार आप सतगुरु में शिष्य हो आप मम प्राणाधार
0: परमहंस गुरुदेव जी तीन लोक के देव सुरनर मुनि सब संत जना नित्य उद्धारकर्ता से सतगुरु

लीटाट नुग्रामी चजाने नहीं युग युग के लीटाट ये तन विश्व की पेलली गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्त जान गुरु मुरति मुख चंद हस्ते बाकने न चकोर आस्तपार निरकत रहू गुरु चरण कमल।

से सुग्रासि आबो ध्यानी आबो ज्ञानी आबो यो प्रकाशी आबो देव सब देवी आबो सूर्य प्रकाशी आबो ब्रह्म निर्वाणी आबो चौर आबो वेदों के ज्ञाता आबो भक्त वासी आबो सतनाम के दाता।

0: महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंदपुरी जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सब संत श्रीमन महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। धर्म की
1: जय।
0: धर्म की
1: जय।
0: अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: आप सब भक्तों की
1: जय।
0: हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
1: महामंडलेश्वर स्वामी अवतार पुरी जी महाराज की जय।

कबन प्रभुदीप निरंजन सबदो। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।

गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, भक्तास, डियर वंस, राउंड द वर्ल्ड, दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत, जाडन राजस्थान पाली, फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स, द कॉलेज, एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila.

तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में. फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया, तक्षशिला. मैनी मैनी थिंग्स. सो ओके, लेट्स गो फर्दर. इन अवर गुरुकुल, ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल, वेयर द स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एंड कॉलेज. इन दिस एरिया ऑफ राजस्थान वी हैव वन प्रोजेक्ट एंड मैनी ऑफ यू नो, इट्स कॉल्ड ज्ञानपुत्र. हम अवर गुरुकुल एडॉप्ट्स द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र. एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं, प्यार करते हैं, समझते हैं. और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र, क्योंकि फादर का, बाप का, माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें. बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन. नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन, द टाइम द स्कूल बिगिन्स फ्रॉम 1st of July. So now our students are coming. But dear ones, you can see many of our Gyanputra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar like gold. And Bhagwan Krishna used to have Pitambar. And this Pitambar is a color of the flame of the fire. So, the Vidyarthi, they are studying. They should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress. And this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural, traditions, ethics, morals and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system there is no aggressivities. They were not aggressive. So in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञान अर्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है.
हम पढ़ेंगे पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी विद्या के अंदर है, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है, ये इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है, और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा। बस तो लक्ष्मी पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो। ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए को नहीं, 15 लाख रुपया उठा सकते हम? अरे बहुत, तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है। 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहां हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ, और वो पैसे जो हैं जो हमारे मस्तिष्क में हैं वो कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार, और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर, the language, the first language what we call is Sanskrit. Sanskrit is the mother of all the languages around the world, maybe 2-3 not. Everywhere there is the words of the Sanskrit language in many countries. And also the culture goes from the Bharat. All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia is also where the South Indians, which we call the Aborigines. The Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है, साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में, और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश, और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ? स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं, इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं, सब कुछ है अपने देश के अंदर में, और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला है देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम है। फिर क्या काम है, वहां तो आराम है, वहां आराम नहीं है। सो
मैं अब आई वॉन्ट

बेटा यहीं खड़े होके दे या नजदीक आ जाए बस. ओके वी विल सी व्हेन इज. देवेश्वर महादेव की जय. अलकपुरी जी महादेव की जय. हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, ओ

ओम शांति शांति शांति। बस अब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ये खड़े हो, बैठ जाओ। बस थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबली already in the school when we have the prayers and all the students there. Now is the time for prasad. Dikh rahe hain sabhi ki nahi dikh rahe? Yes, time for prasad. Theek hai, to yahan apne yahan har mahine mein ek do baar aur main aaunga tab tumhare ko pure sansar ki yatra kara denge swami ji television ke zariye.

0: ओम शलकुरुजी महादेव
1: की जय।
0: वादिदेव देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: श्रीदीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरुजी सद्गुरुदेव भगवान
1: की जय।
0: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर आनंद पुरुजी योगराज
1: की जय।
0: नंदीश्वर भगवान
1: की जय।
0: शिव शंकर भोलेनाथ
1: की जय।
0: हरण्य पार्वती पते
1: हर हर महादेव।
2: शिव भगवान।

होवें मंजन इसी मंत्र से मन मंजन श्री दीप निरंजन सबद जन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

जन सब जनसी मन होवे मन मंजन इसी मंत्र पे मन मंजन श्री दीप निरंजन सब दुख बन प्रभु दीप निरंजन सब दुख

गबन प्रभु दीप निरंजन सबदु श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

0: शांति ही शांति ही शांति ही।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।
0: हरि ओम।

0: When the clouds dispersed, water covered the thirsty land. This was the first verification of the rain harvesting project. The water flowed straight to the lake. The blood of life has been harvested. This is now a reservoir of life, not only for the ashram, but also for many villages in this thirsty region. Now was the right moment to reforest the hill with soils dug out from the lake. The hill will hold a tree. A tree will hold the hill. This is the symbiosis of sustainable development. As much as the rain was a blessing for the desert, it was also a symbol of blessing for the thirsty human soul, a blessing from an encounter with the king of spirituality, Holy Guruji. Sri Madhavanandaji, Swamiji's Guru, is both the rain cloud and the sun. An eternally fresh breeze of saintly presence.
1: इसलिए सत्संग करना चाहिए और संतों के दर्शन करके गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए. गुरुदेव का स्मरण सर्व पापों को धोके अंतकरण की शुद्धि होती है. अंतकरण शुद्ध करने के लिए प्रभु प्रार्थना और प्रभु का स्मरण और गुरुदेव की कृपा. लास्ट में कहा है गुरु कृपा ही केवलम तो शिष्य के परम मंगलम. जिसके ऊपर केवल गुरुदेव की कृपा होती है तो शिष्य के लोक परलोक में परम आनंद और मंगल हो जाता है. इसीलिए सतत गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए. ये भजन गाते हो ये वेदों का सार है. ये तुम्हारे हृदय में वेद का सार यानी ज्ञान प्रकट होता है. साक्षात परमात्मा महाप्रभु जी के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं वो वेदों से भी अधिक है. सागर से सहज तार लेते हैं.
0: The following day, there was the festival of the dawn of consciousness, the light of consciousness festival. The day of Guru Purnima has dawned. Guru Purnima is the day of Gurudev's glory and the ancient verses of Guru Gita that are his hymn. All those who seek knowledge need a teacher, and one who seeks spiritual enlightenment finds a guru, a master, one who knows Atma and Paramatma, soul and God. India has kept this spiritual knowledge alive and attainable to all through direct interaction between guru and his disciple. This relationship always assumes the full commitment of the master and the surrender of a disciple.

0: In this country, wherever Gurudev appears, he is accepted as a source of joy, a source of wisdom.
1: क्योंकि कहा है कि वंदो भारत वर्ष भूमि जहां सतगुरु दर्शन होए आत्म ज्ञान यहीं मिले और देश नहीं कोई। ऋषि मुनि सब संत जन और करे भारत की आस, भारत बिन मिलता नहीं आत्म ब्रह्म प्रकाश। श्री पूज्य भगवान दीप नारायण दीना ब्रह्म उपदेश, माधवानंद आनंद भया पाया भारत देश। तो वी नीड ऑल टू हेल्प अवर सेल्फ टू प्रोटेक्ट द कंट्री। We need to protect the Sanatana Dharma, and we should and we must protect all religions. No religion should be discriminated. No any culture should be discriminated. No any country should be discriminated. We have to respect them as they are.
0: Finally, the day of ceremonial bathing.

0: परमार्थ जिनका धर्म है, संकल्प अधर्म विनाश है। धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की, धर्म के अवतार की जय जय महेश्वरानंद की।
1: बोलिए महेश्वरानंद महाराज की।
2: After the dynamic visit to Maharashtra, here we are again at the Jadan Ashram, in a place of peace, a peace needed for the depth of working with oneself, for the depth of yoga. Here, we come closer to the inner silence out of which all important answers arise. This ashram is a garden, an oasis of life.